इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आज जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठण दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ घरां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करान। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पे, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरां ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरां वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरां चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है, तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नू, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने घरां नू चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही चोलियां भर के घरां नू मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नू चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठा लै आए लैणे नू, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है, आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। पाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई पाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावां, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात सिगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया
अपने हिरदे नाल ला के पाई लैने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लैनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तां मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं।

अवगण बड़ी तिखी छुरी मनुख दे दैवी गुणा नू कट के नकारा करके सुट दें मनुख मनुख ना रह के पशु हो जाता औगने आरा मनुख पशु है गुणवान प्रभु अपने प्यारियां दे हिरदे च गुण वसा के तोरदा है औगना दे वस पै के बंदा थले गिर जाता अपनी हस्ती तो नीवा हो जाता अवगुण मनुख दे गुणा नू कटदे ने दी हस्ती नू कटदे ते सतगुरु अवगुणा नू कटदे सतगुरु दे नजदीक होइए सतगुरु दे चरणी लगीए ते अवगुण कटे जांदे औगण कटे जांदे ने गुण निसरदे जिस सतगुरु पासों प्रभु नाल जुड़न दा उपदेश मिलदा जिस सतगुरु पासों हिरदे च नाम वसाउण दी जाच आउंदी जिस सतगुरु ने आपां हुणे तक पढ़ रहे सां एक बूंद गुर अमृत दीनो ता अटल अमर ना मुआ ऐसा जीवन बख्शिया है जो टिकिया रहन वाला अटल जीवन है ऐसा जीवन बख्शिया है जेड़ा मौत तो ऊपर है और आप देखते दे हो मौत आउंदी है ते बंदे दी कहानी मुक जाती मनुखी जीवन दी कहानी मुक जाती लेकिन एक गुरु का सिख है जिदी जिंदगी मौत कबूलन तो बाद शुरू होती पहला मरण कबूल जीवन की छड आस औगण मर जाते नकारा मनुख मर जाता एक सच्चे मनुख का जन्म होता गुणा का जन्म होता दैवी गुणा नू लैके मनुख उपर नू उठता गुरु नू प्यारा लगता गुरु नू पाउंदा है संसार नू चंगा लगता और मेरे साहब ने ऐसी बख्शिश की है सानू जिवें महाराज ने पावन बाणी च किया है ना जो हमरी बिद होती मेरे सतगुरा साबिद तुम हर जानो आपे तैनू पता है साडा की हाल हुंदा सी तेरे चरनी लगन तो पहला साडी की अवस्था सी हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता गुर सतगुर संग कीरे हम थापे तेरे चरनी लाके असी कीड़े बादशाह हो गए सरदार हो गए मान वाले हो गए रुलते फिरते कीड़े सत्कार योग हो और ये सत्कार इत्थे भी मिलता है तेरी दरगाह विच भी मिलता है तन तन गुरु नानक जन केरा जित मिले है चूके सब सोग संतापे जिंदगी विचों संताप निकल गए चैन आ गया सुख आ गया जीवन में कायर होंदे सां बहादुर बना दिता नफरत नाल भरे सां प्यार नाल भर दिता आलसी होंदे सां उद्यमी बना दिता बुरा चितवदे सां सेवादार बना दिता परोपकारी बना दिता और जिसने औगण कट के गुण समझा के सानू इन्ने योग कीता है अमृत दियां दातां दे के नाम दियां दातां दे के बाणी दी सौगात बख्श के जीवन दा सुचज बख्शिया साहब कहिंदे ने जिन जग जीवन उपदेशिया तिस गुर को हो सदा घुमाया मैं वारने जावा सतगुरु तो तिस गुर को हो खनिए मैं टोटे टोटे हो जावा बलिहारने जावा उस तो जिन मधुसूदन हर नाम सुनाया जिसने वाहिगुरु का नाम मेरे हिरदे विच सुना के वसाया तिस गुर को हो वारने जिन होमे बिख सब रोग गवाया होमे वर्गे महारोग मेरे जीवन विचों कटे ने जिसने इस सतगुरु को वड पुन है उदा कोट आन कोट धनवाद उन्हें बड़ा पुन कीता मेरे ते जिन अवगुण कट गुणी समझाया सदा उस सतगुरु नु चेते रखना गुरसिख दा फर्ज है उदा परुपकार साडे सिर ते उदी बख्शिश साडे सिर ते करदा है जिसने हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु सांडे साडे मथे ते अपने अपने प्यार दा दाग ला के अपने प्यार दी निशानी ला के अपना बना के अपना रूप दिता है अपना सुचज बख्शी है अपना प्यार बख्शी है
ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦੇਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕਰਜ਼ਈ ਹਾਂ, ਹਮ ਕਰਜ਼ ਗੁਰੂ ਪਾਸ਼ਾ।

गुरु प्यारियो, आप जी ने हुने हुने ही गुरबाणी का आनंद माणिया है। असि आप जी का ध्यान एक जरूरी गल वाल दिवाना चाहते हुए बेनती करते हाँ कि जे आप जी घर विच परिवार विच ते बच्चों नाल गलबात पंजाबी करते हो तो आप धनता जो हो, जे कुछ कसर है तो अज तो इस पासे खास ध्यान दो। बच्चों पास पंजाबी विच गलबात करन दा समा केवल घर विच ही है, स्कूल विच, दोस्तों विच, घर दे नौकरां चाकरां नाल तां इह समा उन्हां नूं मिल ही नहीं सकता। जरा सोचो, जे बच्चे पंजाबी बोल ते समझ नहीं सकनगे तां गुरु ग्रंथ साहिब जी दा पाठ करना ते समझना तां इक पासे रहा, ओह गुरुद्वारे जाके की लाभ प्राप्त कर सकनगे? गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी नाल संबंध किवें जोड़नगे? अपना जन्म किवें सफल कर सकनगे? हो सकता है आप जी ने इस पासे कदी ध्यान ना दिता होवे। असीं तां उस ताते दा सुनेहा आप पास पहुंचा रहे हाँ। जे कुछ उनताई है तां ध्यान दिओ ते ओह पूरी करो। आप जितनियां वध तों वध जवानां बच्चों नूं पढ़ाओ अच्छा है, पर पंजाबी तां सिखी दा मुढ अथवा फस्ट स्टैप है, सिखी दा धुरा है। एक अंग्रेज मुदब्बर ने ठीक ही तां कहा सी कि जिस कौम नूं कमजोर करना होवे उसकी बोली खो लवो, पर असीं तां अपने पैरां ते आप ही कुहाड़ा मार रहे हाँ। जदों गुरु नानक देव जी का प्रकाश होया तां मुगल राज दा समा सी, हिंदी जनता कमजोर ते निटार हो चुकी सी। महाराज जी ने इस कौम घातक वातावरण नूं पाब कीता ते बाणी विच फरमाया, घर घर मियां सबना जियां बोली अवर तुम्हारी। ए हिंदी जनता नूं हलूणा सी कि तुसी अपना धर्म ईमान छड के मलेच्छां दियां मर्यादा अपना के घर घर मियां बने हुए हो ते अपनी बोली भी त्याग दिती है। सो गुरु प्यारियो, अपना फर्ज पछाणो, केवल अपना घर ही नहीं बल्कि अपने होर सज्जना मित्रां नूं भी इह सुनेहा दे के गुरु दियां खुशियां प्राप्त करो ते पंजाबी बोलन ते पंजाबी पढ़न लई संगतां नूं सचेत करो। अगों दाते दा अपना काम है, आप ही सहाई होएगा। फिर लोक सुखिए परलोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

कब हूं ना डरूं। ए मालिक सानू एहो जिहा वर दे, शुभ कमां तों पिछे ना हटी, जुल्म नूं देख के कदम पछा ना खिचिए, साडी जान ते बेशक चली जाए। बहुत कुरबानियां कीतियां सिंघां ने, मुगल फौजा ने बार बार हिंदुआं ते हमला कीता, ते सिंघां ने बार बार अपनियां जानां दे के इस हिंद नूं बचाया। जिथे सिंघां ने एडियां कुरबानियां कीतियां, उथे मावां ने ते छोटे छोटे बच्चियां ने भी अपना खून डोल के सिखी दिया नीयां नूं पक्कियां कीता। फ्रक्शियर दा राज है, हर रोज 100 सिंघां नूं मारदा है तां प्रशादा छकदा है। इहदे शिपाही जांदे ने दिन भर सिंघां नूं टोलदे रहिंदे ने, शाम तक पकड़ के लै आंदे ने, ते इह जुल्मी सामने खलो के कोह कोह के मारदा है। अज जिहड़े सिंघ पकड़ के लियांदे ने ना,

कुमार जी श्री दर्शन कुमार जी वालों पेश की गई है। आप समूह संगत नू खालसा जी दे 300 साल जन्म दिवस की लख लख वधाई होवे। सतसंगियो आस है कि इन्हां दी ए सेवा आप कबूलोगे कि अगों वास्ते अरदास करोगे, महाराज बख्शिश करो। ऐसे ही तरह आप संगतां दी ए सेवा करदे रहन। शब्द गुरबाणी दियां कैसटां, इतिहास दियां कैसटां घर घर विच पहुंचांदे रहन।

लोगन स्यों मेरा ठाठा बागा, बाहर सूत सगल स्यों मौला, अलिप्त रहूं जैसे जल में कौला। मुख की बात सगल स्यों करता, जी संग प्रभु अपना धरता। दीस आवत है बहुत भियाला, सगल चरण की एहो मन राला। नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया। पूरा

बैठे दो घड़ियां वास्ते, पर भाई सब लिखते ने आए संत ब्राह्मणे, कीर्तन होवा रहन सबाई।

अपना काम भूल गए। जे राजे दी मालिश करन ए ना गया राजा इनू सजा देवेगा। ता परमेश्वर ने आप सहन नाई दा रूप धारे। लोग कहंदे ने

अधी रात है, रानी किसे चली गई, चार फेरे देखे आए पर रानी नजर ना आई। कई तरह दे मन विच शक पैदा हो गए कि रानी किधरे, गलत पासे तां नहीं जाणी।

पहला मार्ग, पहला रास्ता, पहली जुगत। सतगुरु कृपा करदे ने साहिब धन गुरु अर्जन पातशाह साहिब कहिंदे ने प्यारिया, कदी मच्छी नू देख लै, उदा पानी नाल किन्ना प्यार है, उदा जीवन ही पानी है। एक खिन भी ना धीरे एक पल, एक क्षण भी ओ नहीं रह सकती, दे जे पानी विचों कटदे हो ते भाई उन्हें मर जाने। जे तेरा प्यार इदां दा हो जाए गुरु नाल, इदां दा सुने किते तू गुरु नाल कर लवे ते तेरे जीवन विच पलटा ना आ जाए। शायद कहिंदे ने

दूसरा रास्ता, दूसरा मार्ग ते दूसरी जुगत। शायद सानू दसते ने किते जातक नू वेख लै, पपीए नू वेख लै, जेड़ा स्वाति बूंद के पिछे पपी पपी प्या करदा। सब बाणी विच कहिंदे ने

स्वाति बूंद दे पीछे प्या तड़पदा है आसमान वाल, मुंह खोल के ते पपियो पपिया प्या करदा है, तरले करदा है, जोदड़िया करदा है मेरे पातशाह किते, स्वाति बूंद मेरे मुख विच पा देवे ते मैं तृप्त हो जाऊं। सब आंदे ने प्यारिया किते एदां दी प्रीत कर लै, एदां दा स्नेह कर लै, एदां दे गुरु नाल प्यार पा लै, फिर ते तेरे जीवन दी गल बन सकदी है, नहीं ते तेरा जीवन अधूरा है।

शैव फरमान करते ने गुरु कितना प्रसन्न है, गुरु कितना दयाल है, गुरु कितना रहमतां दा साईं है, एक पल भी नहीं विछड़दा प्यारिया। पातशाह तू मेरे ते कृपा कर, किड्डी कृपा कीती है, कितनी रहमतां कीतियां ने, कितनियां रहमतां दा मींह बरसाए मेरे ते। धन देंदी साच सनेहा, एक मेरा सुनेहा है प्याच्छा हजूर।

गुरु नानक दी मोर ला के धन गुरु अर्जन पातशाह साहब कृपा करके आंदे ने प्यारे कौ नानक छंत अनंत ठाकुर के उस मालिक दे कितने मैं गुण गाव बेअंत है मेरा पातशाह बेअंत है मेरा मालिक बेअंत है रहमतां दा साई कितने गुण गायन करें हजूर बाणी विच कहिंदे ने

साहब जी रचना ते इको ही है लेकिन तेरे गुण बहुते ने। भगत कबीर जी महाराज उस मालिक दे गुणा दा अथाह बयान करदे होए अपने रचना तो कृपा करदे ने ते आंदे ने

एडी प्यास है तेरे दीदार दी, एडी आस है तेरे दीदार दी, मेरे मालिका कर कृपा मेरे दे। को ऐसा संत मोको फिर है मिला, कोई भाई गुरुदा प्यारा मेनू मिला दे, कोई ऐसे गुरुदेव प्यारे नाल मेल करा दे कि तेरे दर्शना दी जड़ी आस लगी हुई है वो मिट जावे। आओ भाई अरदास करिए, गुरु चरणा विच तरला करिए। गुरु अर्जन पातशाह साहब अपने रसना तो आंदे ने मन ऐसा नहीं करे, ऐसी प्रीत कर ले जिवें मछली ने पानी नाल कर ली। चात्रक ने पबीए ने स्वाति बूंद नाल कर ली है, भंवरे का प्यार फुल दे नाल है, सुगंधी नाल है। जिहड़ी प्रीत कदी टुटे ना पातशाह, मेरे मालका एहो जी प्रीत कर, एहो जी कृपा कर, मेरा मन भी तेरे चरणा नाल।

इम्तिहान लिता अपने पुत्रां दा भी और अपने सेवादार पाई लेने दा भी, क्योंकि पता सी के आ जो गद्दी है इस ते ओही बैठ सकता है जो इस गद्दी दे लायक होवे। सात संगत बोलो श्री, और बिना कसौटी ते परखे हुए, बिना परीक्षा लिते हुए आ किवें पता लगे के इस गद्दी ते बैठ दा कौन हकदार है। एक दिन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने विराट रूप धारिया, अगे अगे गुरु नानक सच्चे पातशाह मगर मगर संगतां मगर मगर संगतां नूं आउंदियां वेख धन गुरु नानक सच्चे पातशाह ने पिछा तकिया ते आखिया साडे पिछे की लैण आए हो, जाओ मुड़ जाओ करां नूं सारे। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती माया दे ढेर ला दिते, आख्या साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना, आ माया चुको ते जाओ करां नूं। जिन्हां ने माया तकी ओ माया दी चोलियां भर के वापस चले गए। थोड़ी दूर जाके साहब जी ने फिर मुड़ के वेख्या जे कुछ संगतां होर आ रही हैं। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती चांदी दे ढेर ला दिते, आख्या भाई आ लो चांदी लो ते जाओ करां नूं। जेड़े पैसे ते नहीं फिसले सन ओ चांदी ते डिग पए, चांदी चुक के कई होर भी तुर गए। साहब जी थोड़ी दूर होर गए फिर परत के वेख्या जे कुछ संगतां जे आ रही हैं पिछे पिछे। साहब जी ने नदर कीती सोने दे ढेर ला दिते, सोने दी मोरा ढेर लग्या, आ जेड़े पैसे ते नहीं डिगे चांदी ते नहीं फिसले ओ सोने दी मोरा वेख के उना दे मन गुरु नानक नू छड़ गए। सोने दिया मोरा चुक के करां नू चले गए। साहब जी फिर खोड़ा जागे गए फिर पिछे परत के वेख्या अजे थोड़ी जी संगत आ रही है, तां गुरु नानक सच्चे पातशाह ने नदर कीती ते हीरे जवरातां दे ढेर ला दिते, आख्या लो वही हीरे जवरात आ लै के चले जाओ करां नूं, साडे पिछे आओगे तां कुछ नहीं जे मिलना। जेड़ी संगत थोड़ी बहुत रह भी गई सी ओ हीरे जवरात चोलियां विच पार के अपने अपने करां नूं चले गए। थोड़ी दूर गुरु नानक सच्चे पातशाह फिर गए, हुण परत के वेख्या तां इक पिछे पाई लैणा जी आ रहे हैं। साहब जी ने पुछया लैणिया तू नहीं गया वापस, माया दे ढेर लाए सोने चांदियां दे ढेर लाए हीरे जवरातां दे ढेर लाए आ सारे ही चोलियां भर के घरां नूं मुड़ गए तू नहीं गया। भाई लैणे जी दियां डुब डुब अखां भरियां कहण लगे गरीब निवाज आ सारे जो चोलियां भर के घरां नूं चले गए हन इन्हां दा पिछे कोई ना कोई है, लेकिन मेरा तां इक तू ही है, मेरा तां तेरे बिना होर कोई नहीं है, मैं तेनू छड़ के नहीं जा सकता। सात संगत बोलो श्री। गुरु नानक सच्चे पातशाह नदर हेठां लै आए लैणे नूं, आख्या अच्छा हां गरीब निवाज आ जितने मुड़ गए हन इन्हां दा कोई ना कोई सी ना पिछे, मेरा तां इक तू ही है। तां साहब जी ने आख्या चंगा लैणिया ओ सामने आ मुर्दा पिया है उत्ते चिट्टी चदर पई है आ लैणिया जे हुक्म मनाई तां पहले इस मुर्दे नू खा। भाई लैणा जी सत बचन करके, क्योंकि एक सत बचन दी पढ़ाई भाई लैणे जी ने पढ़ी, जा खड़ोते ते पुछिया हाथ जोड़ के गरीब निवाज फिर हुक्म करो किस पासियों दी खावा, पैर वालों के सिर वालों। गुरु नानक सच्चे पातशाह ने क्या लैणिया जिथों तेरी मर्जी, ते जदों हुक्म मन के जदों चदर चुकी तले कड़ा प्रसाद दी देग पई सी। सात संगत बोलो श्री। हुक्म मनिए होवे परवान तां खसमे का महल पाए सी। साहब जी ने पाई लैणे नूं कोल सदिया
अपने हृदय नाल ला के पाई लेने को अंग से लगाकर अंगद कर दिया। अंगद थापिया और आख्या लेनिया मेरे बाद इस गद्दी दा हुण वारस, इस गद्दी दा मालक तू है। इस वास्ते भाई गुरु नानक दे दर दी सेवा जे किसे ने मनोकामना करके कीती उसकी तो मनोकामना पूरियां होईयां, और जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह दे दर दी सेवा निष्कामता दे नाल कीती ओ गुरु नानक दे घर दे मालक बन गए। इस वास्ते साहिब पंजवें पातशाह बख्शिश कर रहे हैं

छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद जी दे समय बीबी सुलखणी होई है। बहुतियां थावां ते विचारी गई लेकिन कितों पुत्र दी दात ना मिली। शिवालिया ते भी गई, जोगियां दे मठां विच भी गई, कबरां नूं भी जाके पूजिया, मणि मसाणा विच भी गई लेकिन कितों खरैत ना पई। ताईं किसे ने सुलखणी नूं सरोत पाई, सुलखणीए जे पुत्र चाहुंदी है तां गुरु नानक दे दर ते जा। इस वेले गुरु नानक दी छेवीं जोत मीरी पीरी दा मालक गुरु हरगोबिंद अकाल तख्त ते सुशोभित है। तू उन्हां दे चरणां विच जा के बेनती कर ते जो गुरु नानक दे दर ते जा के अरदास करदा है, मंग मंगदा है, ओ कदे फिर खाली नहीं लौटदा। सत संगत बोलो श्री वाहे। बीबी सुलखणी जदों मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी दे चरणां विच गई, जा बेनती कीती, सच्चे पातशाह तेरे चरणां विच अरदास है, मैं सारे द्वारे द्वारे टोल आई हां, कितों खरैत नहीं मिली, इक हुण तेरा दर रह गया और तेरे दर दी मैं स्रोत सुनी है, जो तेरे दर ते आउंदा ओह कदे खाली नहीं मुड़दा, मेरी भी चोली विच इक पुत्र दी दात पा दे, इक पुत्र बख्शो। मेरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने नेत्र बंद कीते और जदों अखां खोलियां ते आख्या, आ सुलखणीए तेरे भागां विच तां सत जन्मां तक पुत्र लिखिया ही कोई नहीं। सत संगत बोलो श्री। बड़ी उदास बेचारी वापस तुर पई, जा रही ते रस्ते विच भाई गुरदास जी मिल गए, अखां विच आंसू सुलखणी दे। भाई गुरदास जी कहन लगे, की गल है बीबी, आ गुरु नानक दे दर ते तां जेड़ा रोंदा होया आउंदा है ओ भी हसदा जाउंदा है, ते तू क्यों रो रही है? आख्या, एक दात पुत्र दी मंगण आई सां, लेकिन आज गुरु नानक दे दर तो भी जवाब हो गया। भाई गुरदास जी कहन लगे, साहब जी ने की आख्या? आख्या, साहब जी क्यों देन, तेरे पागां विच पुत्र है ही कोई नहीं। ता भाई गुरदास जी कहन लगे, ता तू बेनती करनी सी, जे उत्थे पागां विच नहीं लिखिया ते हुण लिख दियो। सत संगत बोलो श्री। उत्थे भी लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी देण वाला तू ही है। ता बीबी सुलखणी जुगत दसी भाई गुरदास ने। भाई गुरदास जी कहन लगे, जदों कल साहब जी साहब जी जाऊंगे ना बाहर घोड़े ते सवार होके, ता फिर तू रस्ते विच बेनती करी। आज बीबी सुलखणी रस्ते ते आके खड़ो गई, क्योंकि पता सी कि आज इस रस्तेओ मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद जी ने लंघना है। आके रस्ते ते खड़ो गई, जदों साहब जी आए घोड़े ते चढ़े ते बीबी सुलखणी ने चरण पकड़ ले। ओ गरीब निवाज, कृपा करो, नाम मेरा सुलखणी, मैं वसदी हां चौबे, अर्ज करेनी आ गुरु हरगोबिंद अगे, अफल जांदी नू कोई फल लगे। सात संगत बोलो श्री। बेनती कर दी हां एक पुत्र दी दात। साहब जी कहन लगे, तेनू कल जो किया सी तेरे भागां विच नहीं। आख्या, फिर गरीब निवाज, उत्थे भी भाग लिखण वाला तू ही है और इत्थे भी भाग बनाउण वाला तू ही है ना, जे उत्थे नहीं लिखिया ते हुण लिख दे। ऐसी जदों प्यार दी बेनती कीती, साहब जी बड़े प्रसन्न हो, आख्या, चंगा सुलखणीए तेनू पुत्र बख्शिया। बीबी सुलखणी हाथ जोड़ के कहन लगी, मेनू बहुतियां ने किया तेरे घर पुत्र होएगा, लेकिन अज तक होया कोई नहीं, हुण मेनू कहते इतबार नहीं, मेनू लिख के दे के जाओ। साहब जी कहन लगे, अच्छा फिर कागज कलम लिया लिख देइए। होर तां कुछ ना मिलिया सुलखणी नू, सामने एक ठीकरी पई सी कड़े दी,
ਉਹ ਠੀਕਰੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਹਿਬ ਜੀ ਇਸੇ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਜੀ ਨੇ ਪੱਠੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਏਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘੋੜੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਤਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਘੋੜੇ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਠਹਿਰ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵੇਖੇਗੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਠੀਕਰੀ ਤੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਜੋ ਏਕਾ ਪਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਘੋੜੇ ਨੇ ਜੋ ਸੁੰਭ ਹਿਲਾਇਆ ਏਕੇ ਦਾ ਸਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਸੁਲੱਖਣੀਏ ਇੱਕ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਤ ਲਿਖੇ ਗਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੋਲੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਲੋੜ ਹੀ ਸੱਤਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮਿਆ, ਲੈ ਕੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਾ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਇਆ ਤੇ ਰਸਨਾ ਨਾਲ

सब तो वड्डा अवगुण की है कि मैं अमृत नूं छड़ के बिख खाई जा रहा। हे परमात्मा, जो तू अमृत की दार दिती मैं वह भी हासिल नहीं की, केवल बिख चखी जा रहा। एदू वड्डा होर अवगुण केड़ा हो सकता है। फिर कहिंदे ने माया मोह परम पै भुले, माया दे मोह विच पै के परमा विच मैं भुलिया फिरदा हां। माया मोह परम पै भुले, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई। सुत कहिंदे ने पुत्र, दारा कहिंदे ने इस्त्री। हे मेरे मालक, मैं तेरे नालों प्रीत तोड़ के, तेरे नालों प्यार छड़ के, मैं अपना प्यार अपने पुत्र तियां नाल ते घरवालियां नाल लाया होए। फिर कहिंदे नहीं

कंचन नारी में जियो लोबत है, वो मीठा माया। हे मेरे मालिक, साडे अंदर ओ गुण क्यों नहीं हन, अवगुण क्यों भरे हुए ने? क्योंकि जेड़ा साडा मन है ना, कंचन कहिंदे ने सोना ते नारी कहिंदे ने इस्त्री, बस इन्हां विषय विकारां विच पै के मोह दे जंजाल विच फस के माया दे मिठे रस चख के, हे परमात्मा सी तेनू पलाया होया।

चंगे गुणवंता हर हर दयाल। हे मेरे मालिक गुणवंता, तू साडे ते दया कर, कर कृपा बख्श। तुसी करो कृपा साडे अवगुण बख्श के ते सानू अपनी चरणा नाल ला लो। कर कृपा बख्श अवगुण सब में, मेरे अवगुण बख्श दे, मैं अवगुण हारा तेरे दर ते आ डिगा हां। अगे

मना मैं रूप, मेरा सेवा रूपी रूप चंगा नहीं, ना बंके नैना मेरे नैन भी सोने नहीं हन, ना कुल टंग ना कुल चंगी है, ना परमात्मा मेरे कुल कोई टंग है, ना मीठे बैण ना ही मेरे बोल मिठे ने, जेड़े मैं बोल बोल के तेनू अपने बस कर ला, मेरे कुल चंगा गुण कोई भी नहीं है।

हे माधव, माया दे मालिक, माया दे साई, माया दे पति, हम ऐसे तू ऐसे। सत्संग तुम ध्यान देना, हुण इत्थे परमात्मा किहो जे है ते असी किहो जे आ, सतगुर कह रहे ने हम ऐसे तू ऐसा, हम पापी तुम पाप खंड।

0: करेंगे।
1: हम पापी तुम पाप खंडन।
0: हे परमात्मा असी चंगे क्यों नहीं, क्योंकि असी पाप करने वाले हैं, तुसी पापां दा खंडन नाश करने वाले हैं। किवें चंगे हो गए? हे परमात्मा चंगा ते फिर तू ही होया ना, निको ठाकर दे सा सामने वाला चंगा तू, जेड़ा साडे अवगणा दा भी नाश करी जांदा। हम ऐसे तू ऐसा, आओ अगे ख्याल करिए, क्योंकि बाणी बड़ी अथाह है, बाणी बड़ी अथाह है। कोशिश करिए इस मान सरोवर ते आइए ते गुरु ग्रंथ दे अखर एक एक चुगन दी कोशिश करिया करिए। इस एक एक शब्द दी विचार इतनी कीमती है, गुरु बख्शिश करे रहमत करे जे किते मन च वस जाए जीवन बदल जांदा है, जीवन पलट जांदा है। हुण सतगुरु ख्याल देंदे हुए कह रहे ने

तुम समसर नाही दयाल मोहे समसर पापी। भगत कबीर जी कहते हैं हे मेरे माधो असी के हो जाए ते आप के हो जाए। कहो कबीर मेरे माधवा तू सर्व व्यापी तुम समसर नाही दयाल। समसर कहते ने तेरे वर्गा, तेरे वर्गा कोई दयालु नहीं है कृपालु नहीं है। मोहे समसर पापी ते मेरे वर्गा कोई पापी नहीं है। तेरे वर्गा दयालु कोई नहीं मेरे वर्गा पापी कोई नहीं ते मेरे वर्गे अवगुण हारे दे ते अवगुण आप ही बख्श सकते हो।

अवगुणहारा ते आप उपकारी हो। मैं अवगुण करी जाना, आप मेरे अवगुणा दा नाश करी जांदे। ख्याल करना, परमात्मा अवगुण बख्शदे हन। एक जगह भगत कबीर जी ने बड़े फखर नाल गल आखी, कहिंदे ने हे परमात्मा तो किन्ना दयालु है,

हे रमैया मैं तेरा बालक हां काहे ना खंडस, तू मेरे अवगुण किवें नहीं नाश करेगा। किन्ना मान है, किन्ना फखर है। ते ऐसा फखर भगत ही कर सकदा है, भगत ही कह सकदा है जिदे हिरदे अंदर परमात्मा की याद वसी हो, जिहड़ा दावे नाल इह कह सके कि मैं तेरा बालक हां ते अपने बालक दे तू अवगुण किवें नहीं नाश करेगा, तू अपने बालक दे अवगुण किवें नहीं बख्शेगा, मैं तेरे को अवगुण बख्शा लेने। इसलिए भाई आओ आप उस मालिक अगे इस तरह बेनती करिए, गोबिंद हम ऐसे अपराधी, गोबिंद हम

एक खिन लेना हर को नाम गोविंद, हम ऐसे अपराधी। कैसा अपराध है, रात पैंदी है सौ जाने हैं, दिन चढ़ दे उठ के कमा कारण तुर पैने हैं, ते परमात्मा दा नाम कदो जपांगे। रात जो सोवे दिन करे काम, एक खिन लेना हर को नाम, एक खिन मात्र भी तू परमात्मा दा नाम नहीं जपदा, तेरे अंदर गुण केड़ा हो।

नाम तो बिना भाई तेरा क्यों छुटकारा हो सकता है, ते नाम मिलता कितों है अख्या जपन वालियां दी संगत विच तेनू नाम मिठा लगन लग जाएगा। जपन वालियां दी संगत विच नाम तेरा आधार हो जाएगा, साच नाम आधार। जिन्हां नू नाम दा आधार हो गया फिर उदियां सारियां ही भुखां दूर हो जांदियां हन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। इस हजूर बख्शिश करते हैं कि ये गुरु की शरण विचों मिल सकदा है। जैसे मंदिर में बल हरना ठहरे, नाम बिना कैसे पार उतरे, कुंभ बिना जल नाहे टिकावे। कुंभ कहंदे न घड़े नू, आख्या जिस तरह जल कुंभ तो बिना टिक नहीं सकता, आ बर्तन तो बिना जल किवें टिकाओगे भाई। वो जल बर्तन तो बिना बिखर जांदा है, जाया हो जांदा है। ते जे तैनू ही सतसंग नहीं प्राप्त होया, गुरु की शरण नहीं प्राप्त हुई, तो तेरा मनुष्या जन्म भी इसे तरह रुड़ जाए। कि कुंभे बद्धा जल रहे, जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्धा मन रहे, गुर बिन ज्ञान ना होए। गुरु की शरण विचों तैनू लोक परलोक दे सुख मिलन।

0: ले की देख, तेरा नाम खुंडकारा।
1: खुंडकारा क्यों लगूंगे?
0: खुंडकारा लकड़ी के उस टुकड़े में कहने ने जिस उत्ते पटरा टिकाया जाता है।
1: पटरा क्यों दे?
0: जिस उत्ते धोबी कपड़े धोते ने, मगर नामदेव जी दात दे छीने सन ना, कपड़े धोंदे धोंदे हो अपनी आत्मा हरी नाम नाल धोंदे सन। इसे उन्होंने कहा कि हे प्रभु, मैनू तेरे नाम की उंगली टेके जिन्नी के पटरे नूं खुंदकारे दी।

तो थोड़ी दूर बाहर स्वामी ज्ञानेश्वर जी ने विश्राम कीता। देखिया नेड़े एक खूह दिखाई दे रहा है, मगर उस दे विच पानी कोई दिखाई नहीं देंदा। खूह ते है मगर पानी कोई नहीं। ते ज्ञानेश्वर जी महाराज ने सोचिया, देखिया भाई ये मेरे नाल जो चले

तू अपनी प्यास बुझा ले। तेरी नारायण ने सुन लई, आइंदा समय विच जेड़े भी इस राह तो गुजरन गे वो अपनी प्यास तेरी अरदास दी शक्ति द्वारा बुझाया करन गे।

देव ते भगती दी अवस्था विच सन, ओ ते नारायण दे चरना कमलां विच जुड़े हुए सन, ते हर विक विचों ना

0: Ondan da kor şavukar tatlıyordu.
1: Şavaş. Şere. Mal paran yandı.
2: Çok umcalar.
0: Ağabey, cemre! Her hafta! Söyle cemre!
3: मेरी बॉडी ता देखने पागल हो जाएगी और मेरी सिंगिंग से कार्य की तेजी की ओर धीमे वालों

मन में ना गुरमत, गुरमत में ना मन, निचल हुए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप।

हुण तू अपना सुभाव वेख। मेरा सुभाव मैं जतन करना के बदल जावे, बल्कि तेरी कृपा हो जावे ते बदल भी सकना। पर मेरे सुभाव ते मेरी करनी वाले पासे मेरे मालिक तू ना वेखी। तू अपने सुभाव ते अपने असूल ते कायम रह। तू बख्शंद होण दा सबूत दे। और कई बारी शायद ऐसे भरोसे ही तेरी बख्शिशों का सहारा है हमको, इसी वास्ते हम गुनाह कर रहे हैं, ऐसे करके भुली जाने, ऐसे करके गुनाह कीती जाने भी कोई नहीं बख्श देवेगा। हालांकि ऐसा चाहिदा तो नहीं, मैनु ऐसा होना तो नहीं चाहिदा। तेरे बख्शंद सुभा दा मैं योग लाभ उठावा, क्यों ना मैं सुधर ही जावा। पर यह सुधारना भी तेरे हाथ है। पिछले गुनाह बख्श के अगो मार्ग पाना भी तेरी समर्था है। मेरा सुभा ना वेखना, अपना असूल ते अपना सुभा वेख के ओदे अनुसार मेरे नाल वर्त।

सेवा करके अपना जीवन सफल कर ले, तेरा मन टिक जाएगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी और यह लोक सुखिए परलोक सुहेले हो जाएंगे।

प्राणी पिता माता धर्त महत दिवस रात दुर्दाई दाया खेल सगल जगत चंगियां या बुरियां।

तू बेअंत को बिरला जाने, को बिरला जाने। गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द। रंग हाय मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा, तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा। नाना रूप तरी भौ रंगी सब तेरे निया, तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत न पावत देव सब। मुन इंद्र महाशिव जो करी, तू बेअंत अत ऊंचा ताका दरबारा।

सच्चे ब्रह्मांड, सच्चे तेरे लोसे आकार, सच्चे तेरे करने सर विचार, सच्चा तेरा अमृतचा दीवान, सच्चा तेरा उत्कृष्टा प्रमाण, सच्चा तेरा कर्म, सच्चा निशान, सच्चे तुद आखे लख करोड़, सच्चा है सबदान, सच्चा है सब जोर, सच्ची तेरी सिफत, सच्ची साला, सच्ची तेरी कुदरत, सच्चे पातशाह, नानक सच तिहाइन सच।

जोगी सुन के हवन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काकार सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे सिंध संसार चोरा जारा तय कूड़ियारा खरा पवेकार एक होंदा खाए चले अथाऊ तेरा बेकाई कार जल थल जिया पुरिया नो आकार आकार कोई जी आखे सुख है जाने तिनक तेरी सार नानकू भगता पुख सलाहनु सच नाम आधार सदा आनंद रहे।

भक्तुड़ी चढ़ चढ़ पवहे अंगियारी नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो बिन सतगुर किने ना पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मिले सदा मुख है जिन विचों मोह चुकाया मेरी तारे।

अलमल खाई सिर छाई पाई मूर्खन दे पत गवाई बिना है कि थाए ना पाई रहे बेबाणी मणी मसाणी अंध न जाने फिर पछताणी सतगुर भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए।

सच्चा वेखै सोए सबनी छाला मारियां करता करे सोए अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे जिनकी देखे पत्त है चंगे से ही के पौड़ी तुर कर जरा को तुर पाया ताकि अपनी खसम ते आया है न जलता के उसके सुनाई तुर वेख की जग तू आया एक राणो।

आटर तीर दे नाव है उतरे नाई मैल जिन पट अंदर बाहर गुजरते भले संसार तेन नेह लगा रब सेती देखना विचार रंग हसे रंग रोवे चुप भी कर जाहे परवाह नहीं किसे केरी बात सचे ना दरबार तो प्रसन्न मंगा जब दे ता खाहे दीवाने को कलमे का हम तुम हमें दर ले लिखा पीड़ छुटे नानका ज्यों तेरे।